0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।

0: बेस्ट प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंदको आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: मध्य पश्चिम ट्रांक चेक यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।

राम राम सन्झेक पाँच बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शारिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका से कृषि यान्त्रीकरण हुन प्रवर्धन गर्न उद्देश्य से 50% अनुदानमा 61 मिनी ट्रेलर किसान हुन वितरण गरिराखल। उपमहानगर भित्र कृषि फर्म दर्ता करलक कृषि समूह तथा सहकारीमा आबद्ध किसान मध्ये छनौट करगिलक कृषकलाक मिनी ट्रेलर वितरण करगिलक हो। वितरण कार्यक्रममा तुलसीपुरका प्रमुख टीकाराम खड्कासी अनुदानमा प्राप्त कृषि उपकरणको सदुपयोग कैकन उत्पादन ओ आमदानी बढ़ाएका किसान हुन आग्रह गरिराखल। वहाँसे अनुदानमा प्राप्त मिनी ट्रेलर बिक्री करलक ओ अन्य व्यक्ति हन प्रयोग कर तेलक पागिलसे कानून बमोजिम कार्यवाही करजिना बटवा रखल। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकनारायण पौडेलसे लागत समय ओजन शक्ति घटाकन कृषि उत्पादन बढ़िना उद्देश्य से कार्यक्रम संचालन करगिलक बटवा रखल। वहाँसे किसान हन मिनी ट्रेलर हन उपमहानगरपालिका से 6 लाख रूपया बजेट विनियोजन करलक ओ ठेक्का प्रक्रिया मार्फत 53 लाख रूपयामा खरीद करगिलक बटवा रखल। वहाँसे मिनी ट्रेलर कलाक प्रत्येक किसान से करीब 26,500 रूपया व बाकी 26,500 रूपया रकम नगरपालिका से अनुदान स्वरूप उपलब्ध करागिलक जानकारी दे रखल। कृषि शाखा प्रमुख कुलराज चौधरी से स्थलगत अनुगमन पाछ किसान छनौट कैकन मिनी ट्रेलर वितरण करगिलक जानकारी दे रखल। कार्यक्रम में किसान मिश्री लाल पुन से मिनी ट्रेलर उपलब्ध पाछ समय ओ जनशक्ति को बचत होना व कृषि क्षेत्र में लागत घटना बटवा रखल। अमिलिया सामुदायिक वन क्षेत्रमा आज 1,500 महुवा प्रजातिको बिरूवा लगेती वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न करगिलबा। ग्रीन फाउण्डेशन नेपाल ओ अमिलिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका संयुक्त आयोजना तथा सब डिभिजन वन कार्यालय सतबरिया तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लमैन बैंकको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मञ्जित खड्काको अध्यक्षता तथा ग्रीन फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेको बरपौनामा सम्पन्न कार्यक्रममा सामुदायिक वन क्षेत्रमा महुवा प्रजातिका 1,500 बिरूवा लगिलक आयोजक जनाराखल। कार्यक्रम हुन सम्बोधन गर्दै बरपौना पाण्डेले सामुदायिक वन मुहान संरक्षण केल सीमित निधैकन उत्पादन ओ वन उद्यम से द्वारा पर्न आवश्यकता औल्या राखल। स्थानीय उपभोक्ता से वन संरक्षण व्यवस्थापन ओ रेखदेख संग आय आर्जनमूलक गतिविधि हनफे प्राथमिकता दिह पर्ना बटुवा रखल। यही से वन संरक्षण संग स्थानीय समुदाय का आर्थिक अवस्था सुदृढ़ बनाई सहयोग पुग्ना उहाँ का काहिरा लहिन। वृक्षारोपण कार्यक्रम में सब डिविजन वन कार्यालय देवखरी का प्रमुख गणेश खड़का सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दांग का अध्यक्ष हरि भूषाल सब डिविजन वन कार्यालय सतबरिया का प्रमुख मोहन मिश्र ग्रीन फाउण्डेशन नेपाल दांग का उद्यम प्रवर्तन विकास अधिकृत सुरेश रावत स्थानीय उपभोक्ता वनकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको सहभागिता रहल रह। आयोजक अनुसार महुवा प्रजातिको संरक्षण ओ विस्तार गर्दै वन क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय समुदायिक दीर्घकालीन आय आर्जनमा टेवा पुगिन उद्देश्यले वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। स्थानीय वन महासंघ लमहीका अध्यक्ष पूर्ण बहादुर बस्नेतको स्वागत मन्तव्यपछि शुरू हुने कार्यक्रमको सहजीकरण ग्रीन फाउण्डेशन नेपाल दाङ कार्यक्रम संयोजक दीपक वरियार करल रह। दुई दशक से फिर लम्बा समय से संरक्षण और विकास को पर्खाई मरलग दांग को तुलसीपुर उपमहानगरपालिका एघार सुकौरा स्थित ऐतिहासिक दंगेश्वरण दरबार पुनर्निर्माण का प्रक्रिया औपचारिक रूप में अघारी बढ़लबा। लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन तथा यातायात मंत्रालय अंतर्गत का पर्यटन डिवीजन कार्यालय कोहलपुर का दरबार संरक्षण जीर्णोद्वार तथा निर्माण का 4,90,00,000 रूपया का बोलपत्र आह्वान करल संग यी क्षेत्र का ऐतिहासिक संपदा संरक्षण प्रति लौ आशा जगल हो। लम्बा समय से अल्पत्र अवस्था में रलक दरबार का संरक्षण लाग प्रदेश सरकार का निर्माण प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ाई पा थारू समुदाय इतिहासविद तथा सांस्कृतिक अभियंता से स्वागत करल बाट हुकनक्से यहां एकठो भवन निर्माण का काम के होकन थारू सभ्यता दांग इतिहास और राष्ट्रीय पुरातात्विक संपदा का संरक्षण संग जोर्गिलक महत्वपूर्ण शुरूआत का रूप में लिहल बाट।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका तीन बल्लेमा जंगली च्याउ खाइबेर एकजनाको मृत्यु हरहल अन्य चारजना ब्याराम परलबाट मृत्यु हुनामा 37 वर्षीय दीपा फुन रलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डाक्टर हेमबहादुर केसीले जानकारी दिएर उहाँको अनुसार स्थानीय जंगल से आनगिलक जंगली च्याउ पकाकन खाइलपाछ शुक्रबार एक घरक पाँचजना ब्याराम परलह बेरम्याको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनल पाछ राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा प्रारम्भिक उपचार पाछ थप उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा रिफर गरिल रह बेरम्या मध्ये दीपा फुनको अवस्था गम्भीर हुइल पाछ थप उपचारका लागि गोगली स्थित संजीवनी अस्पतालमा पठागिल रह उफे स्वास्थ्यमा सुधार नियाल पाछ थप उपचारका लागि नेपालगंज लैजिती करबे शनिबार डगरीमा उहाँको मृत्यु हुलक प्रहरी नायब उपरीक्षक केसी जानकारी दिएर अन्य बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुल पाछ अस्पताल से डिस्चार्ज करगिलक प्रहरी जना राखल घटना पाछ प्रहरीले जंगली तथा अपरिचित च्याउ सेवन निकर सर्वसाधारण आग्रहकै राखल विषालु च्याउको पहिचान कर कठिन हुना हुलक वर्षे चिन्हक प्रमाणित सुरक्षित च्याउ केल सेवन कर प्रहरीले अनुरोध कै राखल ओ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटिती मितव्यायी शासन प्रणाली हन प्रभावकारी बनाएकोला प्रदेश सरकार अन्तर्गत रलक मन्त्रालयको संख्या 12 घटाकन 8 झर्ना तयारी गरिराखल गत जेठ 1 गते बैसलक प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटिना निर्णय गरल पाछ वकर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक पुरा कैकन पुरा करल बा आप राजनैतिक सहमति जुट्ना साथ निर्णय कार्यान्वयनमा जैना सरकारको तयारी बा सरकारका आर्थिक वर्ष 2083-84 नीति तथा कार्यक्रम समेत मन्त्रालयका संख्या घटिना विषय हन प्राथमिकताका साथ समावेश गरिल रह ओ निर्णय कार्यान्वयन गर प्रदेशको प्रमुख सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीक संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिल रह मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव शम्भु प्रसाद मरासिनीसे समितिसे मन्त्रालय पुनर्संरचना सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन विश्लेषण तथा प्रशासनिक खाका तयार कर्सेकलाई जानकारी दिएर उहाँको अनुसार मन्त्रालय घटाकन विषय राजनैतिक निर्णय से जोरगिलक वर्षे आवश्यक राजनीतिक सहमति हुई पाछ तत्काल कार्यान्वयन करसेक जिना अवस्था रहलबा हुइठा त आज थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन्न सिक्ने बाटी अखसक खबरमा से समाचार कक्षको सक्कु संग्रहणसँग मैशालिक राम चौधरी विदाई टुरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंदको आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोही कसैलाई रोग लागे पोखा अस्पताल जाऊ। सर्जन फिजिसियन हाड़ जोड़ने नशा प्रसूति रेडियोलॉजी एनेस्थेसिया बाल रोग थायराइड प्रेशर सुगर छाती मुंडू नाक कान घाटी टाउको गैस्ट्रिक अल्सर फिजियोथेरापी दूरबीन विधि ऑपरेशन लगाए स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण

0: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज।
1: सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।